पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, यह बनंती सुन प्रभ मेरे, देहु नाम करे अपने चेरे, अपनी सारन राख प्रभ दाते, गुरपद साध कने बिरले जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल बैसे मेरे चीता।

0: असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
1: असंख सोर मोह पक्ष

0: है जे है आजाद है
1: जन्म है वर्ण है भूत है अपर्ण है
0: अगंज है अपंज है अचूच है अचंज है
1: अमीक है रफीक है दंद है बंद है
0: निर्बुज है असूज है अकाल है अजाल है
1: अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है
0: अलीक है नरसरीक है नरलंब है असंब है
1: अगम है अजम है भूत है अशुत है
0: अलोक है अशोक है अकर्म है अभर्म है
1: अचीत है अपीत है अवाह है अगाह है
0: मान है नदान है अनेक है फिर एक है
1: नमो
0: सर माने समस्त नदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: अनंगे नाथे नरसंगे परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बपुते
0: कलंकंग बनाने ने कलंकी स्वरूपे नमो राज विश्वंग परम रूपे
1: नमो जोग जगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज विश्वंग परम वृद्धे
0: नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमे अपोगी अपोगते नमो जोग जगेश्वरंग परम जुते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रिय देवेशो धर्मे
1: नमो

0: चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर जाने चतर चकर जाने
1: चतर चकर बरते चतर चकर परते चतर चकर पाले चतर चकर काले
0: चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने चतर चकर दाने
1: चतरे शंदर
0: ना सतरे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे
1: ना करमंग ना काये अजन्मंग अजाये
0: ना चित्रे ना मित्रे परे हैं पवित्रे
1: परदिशे आदिशे अदृशे अकृशे भगवती शंता प्रसाद करते
0: के आचे जेचे के आप पिस पीचे के आ गंज कर्मे के आप पांच परमे
1: के आ पिचे लोके के आ दिख सुके के अवधूत बनने के वभूत करने
0: के राजन प्रभाग धर्म तना के आसो को बने के सर्व अभरने
1: के चेतन कृति है के शत्रु क्षत्रि है

0: के सर्वत्र माने के सर्वत्र जाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: सर्वत्र दीने के सर्वत्र नीने के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र के सर्वत्र काले
2: के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पोख
0: के सर्वत्र तराणे के सर्वत्र पराणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पीछे
1: के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे
1: के सर्वं कली में के फर्म फही में के
0: आकल अलामे
1: के
0: साहिब कलामे हुसनल वजुआ तमाम रजुआ हमीशो चलामे छलिक नंबदामे
1: गनीमत शिकस्ते

0: मुक्त स्वरूपेत्र मुक्त भूत पर भुक्त प्रवास युक्त सुधा है
1: सदैवं स्वरूप है अपेदी अनुप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है
0: समस्तल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाद स्वरूप है अगाद है अनूप है
1: अगाद रूप है अनाद स्वरूप है अलिंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाम है
0: तर्वर्गं तर्वादे अगंजे अगाजे सुविंग सुरपागे सुसर्व अनुरागे
1: तर्भुक्त स्वरूप है अचिज है अचूत है
0: नरकं प्रवास सदा व्यक्त सदा वियुक्त रूप है पर जोगत अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है पर जोगत अनूप है चाचरे छंद
0: अपंग है अनंग है अपेख है लेख है
1: अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है
0: अजय है अभय है अपूत है अतूत है।

0: जग जाने
1: सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वस्य है, सर्वनास्य है,
0: करुणाकर है, बसंबर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
1: ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है,
0: जपा जप है, थपा अताप है, अकृता कृता, अमृता अमृत है,
1: अमृता अमृत है, करुणाकृत है, कृता कृत है, करणीकृत है,
0: अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृता, अमृता अमृत है,
1: अजपा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, कलकायक है,
0: बसंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर पायक है,
1: अपंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
0: अकलंक कृता, सर्वा कृता, कर्ता कर है, हरता हर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुचंक पयात छंद,
0: नमो सूर्य सूरज, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
1: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
0: नमो राज सिंह ताम सिंह सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे,
1: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
0: नमो जुज जुजे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
2: नमो कल्ले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, नारंग बपुते,
0: अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके,
1: अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, तरपंगी तरकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरे छंद,
0: अजय अले अपे अबे,
1: अभो अजो अनास कास,
0: अगंज अपंज अलंक

0: नम सर प्रणामे समस्त सर प्रणासे अगंजल नामे समस्त सर निवासे
1: निर्कामंग पैपुते समस्त स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदर्मंग पैपुते
0: सदा सच दा नंद सतरंग प्रणासी करी मुनक निंदा समस्त सर निवासी।

0: सकल प्रजा जन आप सवारी
1: सेवकन को सेवकन सुख दियो सतरन को पल मो बद कियो
0: काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने
0: जाबुद कर करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा
1: कर कर तो हो कब हूँ तो मैं मित्र
0: जेते 15 श्रेष्ठ सब धार है।

अबरच्छा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो जे हस्तुज तब सरणी पर तिन कै दुष्ट दुख्त वह मरे।

0: ए रसना तू अंदर सराच रही तेरी प्यास ना जाए
1: प्यास ना जाए होत कीतै जिच हरस पल्ले ना पाए
0: हरस पाए पल्ले पिए हरस बहुत न तिसना लागे आए
1: एहो हरस करमी पाई।

0: जग मैं आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जन जियो उपाए जगत दिखाया।
0: प्रसादी बुझिया ता चलत हो चलत नजरी आया।
1: कहे नानक सृष्टि का

0: अष्टपदे
1: जय मात पिता सुत मीत न पाई
0: मन उहा नाम तेरे संग सहाय
1: जय महाप्यान दूत जम दल
0: तै केवल नाम संग तेरे चले
1: जय मुश्किल हो बै अत भारी
0: हर को नाम फिन माहे धारी
1: अनक पुने चरण कर नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख कनेरे।

0: भोग जोग
1: हर नाम जप कह नाही
0: भयो जन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के माल खजीना
1: हर तन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन के ओट सतानी
1: हर पर ताप जन अब न जानी
0: पोत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाज नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भगत पर प्रेम छपे
0: हर की भगत भगत मुक्त भव करे
1: नान जान सा केते तरे
0: पार जाते हर को नाम
1: काम ते हर हर गुणगान
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनन दर्द गलत
0: नाम की महिमा संत रिद बसे
1: संत प्रताप दुतर सब नसे
0: संत का संग बड भागी पाईए
1: संत की सेवा नाम ते

0: गुरमुख नाम जपिए एक बार।
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे,
0: महादास परिसर
1: थिवे, अगन माहे होमत प्राण,
0: कान का सब है भरपूर दान,
1: ल्योली कर्म करे बो आसन,
0: जय मार संयम सदन,
1: निमक निम कर शरीर कटावे,
0: तपे हमें मैल न जावे,
1: हर के नाम सम सरकश नाही,
0: नान गुरमुख नाम जप गत पाहे,
1: मन कामना तीरथ दे छुटे,
0: गर्व मान न मनते उठे,
1: सोच करे दिन स रात,
0: मन के मैल न तंते जाते,
1: इस देही को बो साधना करे,
0: मानते

0: जैसे सुर सर्पोस
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
2: जैसे राय राम को लागे
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज
2: देखो चंदन
1: ब्रह्म ज्ञानी का हे गनाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल
2: जैसे मैं न लगे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगा
2: जैसे तारो पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
2: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा
2: मन अपने है सते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
2: नानक जन पर व्यापरे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीनी
2: आत्म रास ब्रह्म ज्ञानी के ना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में
2: ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न
1: भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
2: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षे
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्त
2: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्त
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
2: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
2: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह
2: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार हमाह
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
2: ब्रह्म ज्ञानी लेता उत्वंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो
2: पला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
2: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक
2: रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे परम संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
2: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
2: ब्रह्म ज्ञानी अद्भुत जगत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
2: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
2: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
2: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
2: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
2: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइये
2: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
2: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप

0: ज्ञानी का कथया न जाय अदाखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व काठा कर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
2: ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पाए
2: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
2: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
2: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
2: ब्रह्म ज्ञानी का सर्व पर
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार
2: ब्रह्म ज्ञानी अपने निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
2: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
0: और तारे जो अंतरनाम
2: सर्व मैं पेखे भगवान
0: निमक निमक ठाकुर नमस्कार
2: नानक वो पर सगल निस्तारे अष्टपदे
0: मिथ्या नाही रसना पर
2: मन में प्रेम निरंजन दर्श
0: पर त्रिया रूप न पेखे नेत्र कर्ण न सुने काहू की निंदा
2: सब दे जाने अपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिखिया पर हरे
2: मन के वाचना मन ते तरे
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहते
2: नान कोट मदे को वैसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
2: विष्णु की माया ते हो
0: बिना कर्म करत हो बे नह कर्म
2: जिस वैष्णो का निर्मल तन
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
2: केवल पद कीर्तन संग्रचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
2: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अबरा नाम जपा
2: नानको वैष्णव परमगत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
2: सगल ते आगे दुष्कर संग
0: मन ते बिनसे सगला पर
2: कर पूजे सगल पर ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
2: तस भौतिक कीमत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
2: माता ने अर्पे विष्णु प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
2: नानक ऐसा भौतिक भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन पर बुद्ध
2: राम नाम आत्म में सुध

0: सर्प उपाय
1: कई कोट पाथर बिरख न बजाए
0: कई कोट पवन पानी बह संत
1: कई कोट देश मंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दान इंद्र सशत्र
0: कई कोट
1: सगल समग्री अपने सूत तारे
2: नानक जे जिस भावे तिस सारे
0: कई कोट राजस तामस सात
1: कई कोट वेद प्राण समर
0: कई कोट किए रतन समुंदर
1: कई कोट नाना प्रकार जान
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी में
0: कई कोट जग किनर पिसाच
1: कई कोट पुत्रे सुकर मेर गाज
0: सब ते नेरे सब होते दूर
1: नानक आप लपकरे अपर
0: को कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरसंहार
0: कई कोट जन्म जीवे मरे
1: कई कोट भोजने फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाए
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में जंत
0: कई कोट बैठत
1: जय पाणा तन रखे नानक सब
0: कई कोट पै बैरागी
1: राम नाम संत
0: कई कोट प्रभु को खो जनते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास कई कोट मांगे सतसंग जिनको होए आप सो प्रसन्न
1: नानक तेजन सदा तन तन

0: प्रभावै ता पतित उधारे
1: आप करे अपन बेचारे
0: दुहां सरिया का आप स्वामी
1: खेले बिकसे अंतर जामे
0: जो पावै सो कार करावे
1: नानक दृष्टि अवर न आवे
0: कहमा नुक्ते क्या होए आवे
1: जो तिस पावे सो ही करावे
0: इसके हाथ होए ता सब किछले
1: जो तिस पावे सो ही करे
0: अनजानत बिख्या मै रचे
1: जे जानते अपने आप बचे
0: पर में भूला दे दिस धावे
1: चार कुंठ फेरे आवे
0: कर कृपा जिसे अपनी भगत दे
1: नानक तेजन नाम रे
0: तिन में नीच कीट को राज
1: पार ब्रह्म ग्रीव निवाज
0: जाका दृष्ट कछु न आवे
1: तिस सकाल दरिस प्रटावे
0: जाको अपनी करे बख्शीश
1: ताका लिखाना गणे जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास
1: कट कट पूर्ण ब्रह्म परदास
0: अपनी बणत आप बनाई
1: नानक जीवे देख बढ़ाई
0: इसका बल ना ही सहात
1: कान करावण सर्व को नाथ
0: कारी बपरा जियो
1: जो तुझ पावे सोई पंथियो
0: कभू ऊंच नीच में बसे
1: कभू सोग हर करा नसे
0: कभू निंद चिंद व्यवहार
1: कभू आकाश प्याल
0: कभू बेता ब्रह्म विचार
1: नानक आमला मन हार
0: कभू नृत करे बपां
1: कभू सोए रहे दिन
0: रात कभू महा क्रोध विकराल
1: कभू सर्व की हो तरवाल
0: कभू होए बह बड़ राजा
1: कभू पखारी नीच का सजा
0: कभू अपकी रत में आवे
1: कभू भला
0: जो प्रभाव है तिब ही रहे
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबू होए पंडित करे बखान
1: कबू मोन तारी लावे ध्यान
0: कबू तट तीरथ स्नान
1: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबू कीट हस्त पतंग होए जियो
1: अनक जोन पर मेह पर मियां
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रभाव है सिवे निचावे
0: जो तिस भाव है सोई होए
1: नानक दूजे अवर ना होए
0: कबू साध संगत एह पावे
1: उस स्थान ते
0: अंतर होए ज्ञान पर गास
1: उस स्थान का नहीं बनास
0: मंता नाम रते करंग
1: सदा बसे पार ब्रह्म के

0: आप उसको कर्मवंत कहावे धन भूमिका जो करे गुमा कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे धनवंता हो क्या कारगर भावे वो लश्कर मान ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म ने द्रव आपस को जो भला कहावे सर्व की रेन जा का मन हो जब लग जाने मुझ ते किछ हो जब यह जाने मैं किछ करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खटेला कोट तावे अनक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राजे नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हाथ जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप
0: जो किश किन्नो सो अपने रंग दूजे देखे करे विवेक मरे न बिनसे आवे न जाए आप उपदेश समझे आप आप कीनो आपन विस्थार उसते भिन्न कहो किश हो अपने चल तप करने हार मन में आप मन अपने माही सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीनो भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
1: सुनी सब पवित्र।

0: संत के दुखन आरजा घटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सब बाते
0: ही, संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन तन प्रस्त होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संसार निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
2: संतन के
1: दुखन काग जी लवे,
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए,
2: संत के दुखन
1: तरह जोन कमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
2: संत के दुखन सबको छले,
0: संत के दुखन तेज सब जाए,
2: संत के दुखन नीच न जाए,
0: संत दुखी का थाव को नाही,
2: नानक संत पावे ता भी गत पाए,
0: संत का निंदक महा ताई,
2: संत का निंदक हिंटिकन न पाए,
0: संत का निंदक महा त्यारा,
2: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते ही,
1: संत का निंदक दुखियार दीना,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
2: संत के निंदक को सदा,
0: संत की निंदा दोख में
1: दोख, संत पावे ता उसका पी हो,
0: संत का दुखी सदा पवित्र,
1: संत का दुखी किसी का नहीं मित,
0: संत के दुखी को दान लगे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महाकारी,
1: संत का दुखी सदा विकारी,
0: संत का दुखी जन में मरे,
1: संत के दुखना सुखते करे,
0: संत के दुखी को नाही ठाव,
1: नानक संत पावे ता ले,
0: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी कित काए न पंचे,
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइए,
1: उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: सास बिना मैं ते
0: संत के दुखी की जड़ किस ना।

0: पूरन सरना जोग
1: जो कर पाया सोई होगा।
0: मन पन जाका नेत्र फोर
1: इसका मंत्र न जाने हो
0: अंदर वो मंगल सत जाकर
1: सब सुने करता के
0: राज में राज जोग में जोगी
2: गृहस्थ में
0: त्याय त्याय भक्त सुख पाया
2: नानक पुरखा के।

0: सो जाना
1: अपने का हुक्म पहचाने
0: इसकी महिमा कौन बखान
1: इसका गुण कहे कन्हैया जाना
0: आठ पैर प्रभ से हजूरे
1: नाम से जन
0: मन मेरे तिनकी ओट ले
1: अपना तन जन दे
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता
2: सो जन सर्व सुख का दाता
0: जिसकी शरण सर्व सुख पाव है
2: जिसके दर्शा पाप मिटावे
0: अवर सयान पसगली शाद
2: जिस जन कीतों सेवा लाग
0: आवन जान न हो भी तेरा
2: नानक तिस जन के
1: पूजो सत पैरा श्लोक
0: सत पुरख जिन जानिया
2: सत पुरख सा
0: तिसके संग सिख उदरे
2: नानक हर गुण गाओ
0: अष्ट सतगुर सिक्की करे पतपाल
2: सेवक गुर सदा दयाल
0: सिक्की गुरदुर मतमल हिरे
2: गुर बचने हर नाम जरे
0: सतगुर सिक्के बंधन काटे
2: गुर का सिख बकाते
0: सतगुर सिक्को नाम धन दे
1: गुर का सिख बड भागी है
0: सतगुर सिक्का हलत पल सवारे
1: नानक सतगुर सिक्को जी नार समारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर के आज्ञा मन में से
0: आपस को कर कश न जनावे
1: हर नाम हृदय सते आवे
0: मन बेचे सतगुर के पास
2: सेवक के कार्य रस
0: सेवा करत होए ने कम
2: जिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे
2: नानक सो सेवक गुर की मत ले
0: बीस बिस्वे गुर का मन मान
2: सो सेवक परमेश्वर की गाजन
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाम
2: आनवार गुर कवल जा
0: सर्वदान जी का दाता
1: आठ पैर पार ब्रह्म ग्राता
0: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
1: एक आप नहीं परम
0: सह सियान पलया न जाइए
1: नानक ऐसा गुरु बटपागी पाइए
0: सफल दर्शन पेखत पनीत
1: असर जन जन निर्मरीत
0: पेड़त संग राम गुण रवे
2: पार ब्रह्म की दरगे कवे
0: सुनकर बचन कारण आगा
1: ने मन संतोग आत्म पत्याने
0: पूरा गुर अखियो जाका मंत्र
1: अमर दृढ़ पेखे हो संत
0: गुण बेअंत की मत नहीं पाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: जेबा एक उस्तत अनेक
1: सापुर पुरम हुए
0: बाहु बोल न पहुंचत प्राणी
1: आगमा गोचर
0: निराहार निर्वैर सुखदायी अनक भगत बंधन नित कर सद बलिहारी सतगुर अपने
1: प्रसाद ऐसा प्रभु अपने
0: यो हरस पावे जन कोए उस पुर का नाही कदे विनाश आठ पैर हर का नाम ले मो माया कै संग न ले अंधकार दीपक पर गासे तापत माहे ठांड बरताई
1: अंध प्या दुख
0: जन्म मरण के मिटे अंधे
1: साधु के पूरन उपदेश
0: पौ चुका निरपौ होय बसे
1: सगल प्याद मनते खै नसे
0: जिसका सातन कृपा तारी
1: सा सांझ अपना मरारी
0: थित पाई चुके प्रभु गम
1: सो नानक हरा जा सरवण
0: निर्गुण आप सर गुण पियो ही
1: नरा तारिन सगले मोहे
0: अपने चरित प्रभु आप बनाए
1: अपने कीमत आपे पाए
0: हर बिन दूजा नाही कोई
1: सर्वांतर एको सोई
0: ओत पोत रबिया रूप रंग
1: गए प्रकाश आते संग
0: रच रच ना अपनी कल तारी
1: अनकबार नानक बलिहारी श्लोक
0: साथ न चाले बिन भजन।

0: नीत बिसारो
1: जान कवर में उतारो
0: कारण कारण प्रभ सो सो प्रभ समरथ
1: दृढ़ कर गहो नाम भरवथ
0: तन संचो हो बो भगवान
1: संजना का निर्मल मंत्र
0: दास रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिटिया है
0: जिस तन को चार कुंठ उठता
2: है।

0: राष्ट्रपदे
1: जब आकार आकाश न दृष्ट
0: पाप हन तब कहते होता
1: धारी अपन सुन समाद
0: और कैसे अंक मात
1: जब इसका बन चिन्ह न जापता
0: तब हर सुख किसे जापता
1: जब अपन आप आप पार ब्रह्म
0: तब हो कहां के शोभत परम
1: अपन खेल आप भरतीजा
0: करने हर न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल तन
0: तय बन मुक्त को किसको गने
1: जब एक हर अगम अपार
0: तब नरक सर को कौन अतार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज पाए
0: तब शेष कहाँ का ठाए
1: जब आपे आप आप ज्योतर है
0: तब कबन डर कबन कर डरे
1: अपन चल तब करने हार
0: नानक कहते अंपार
1: अविनाशी सुख अपन आसन
0: जन मरण को कहाँ विनाशन
1: पूरन करता प्रभ सोए
0: तब जम के त्रास को कुछ होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एक
0: तब चतर कोश पोश पूछ लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाध
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बंधे
1: अपन आप आप ही अचर जा
0: नानक आपा रूप आप ही पर जा
1: जय निर्मल पुरक पुरक पत होता
0: तय मैं मैल कहूँ क्या तुता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: तय कौन को मान कौन मान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: तय चाल चित्र लगत को कीस
1: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: किसे पोह कौन ते बतावे
1: कर्ण करावण करने हार
0: नानक करते का नाही स्मार
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाए
0: तब कवन माए बा मित्र सत पाए
1: जय सर्व कला पेपर भी
0: अभेद देव कहा को चीन
1: जब अपन आप आप और तार
0: हम कहा बेचारे
1: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
0: तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: विस्मन विस्म रहे विस्मार
0: नानक अपने जानो आप
1: अशल अशेद भेद समाया
0: वहां किसे पे आप पतमाया
1: आपस को आपे आदेश एक एक भगवान
0: तै कौन किंत किछ लगे चिंता
1: अपन आप आप
0: तै कौन कथे कौन सुने हरा
1: बेअंत ऊचते उच्च
0: नानक आपस को आपे पंच
1: आप रचियो पर पंच अकार
0: गुण में के न विस्तार
1: पई कहा
0: वो नरक स्वर्ग विषावत
1: आल जाल माया जंजाल
0: हमें मो परम पै पर
1: सुख मान अपमान
0: अन प्रकार की अवख्यान
1: अपन खेल आप कर देखे
0: संकोचे तो नान के
1: जय अवगत अपगत आप
0: जय पसरे सार संत प्रताप
1: पाका आपे तनी
0: मुझे सबान हम बने
1: आपे कौत करे आनंद चोज
0: आपे रस पोगण निर्जोग
1: जिस पावे तिस अपन नाई लावे
0: जिस पावे तिस खेल खलावे
1: शुमार था अगणित
0: जी हाँ बोला।

0: शांत संगन तर प्रभु
1: प्रभु का रंगा मिठा
0: सगल समग्री एक स्कट माहे
1: अनक रंग नाना दिसाए
0: नौ ने दे अमृत प्रभु का नाम
1: देहि में सर्व
0: सन समाद अनहत नाद
1: कह न जाईए छात्र समाद
0: तें देखया जिस आप दिखाए
1: नानक जन सुजी
0: पाए सो अंतर सो बाहर अनंत
1: काट व्याप प्रभु
0: धारण माए आकाश पया
1: लोक पूर्ण प्रभा
0: भंतेन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा
0: पौन पानी वह संतर माहे
1: चार गुण दय
0: तिसते भिन्न नहीं को ठाओ
1: गुरु प्रसाद नानक
0: वेद प्राण सिमरत में देख वाणी प्रभ की सबको बोले सर्व कला कर खेले खेल
1: बोलना पाए गुण।

जन सतर मारे मारिए आप हाथ दे मुझे मरण काल का त्रास हरिए हो जो सदा हमारे जो करे और अच्छा राख लियो मन साहिब संत साए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हम तुम हो पूरे चतुर्दश कंत काल पाए ब्रह्मा भक्त काल पाए शिव जीव अवतर काल पाए कर्म सकल काल का किया तमसा जवन काल जोगे से वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सो नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जो छन्य आवंते के अवतार सोहि गुरु समझियो नमस्कार ते श्री कुमारे सकल प्रजा जिन आप सवारी सबगन को सबगन सक दियो छतर को पल मोहबद कियो कट कट के अंतर के पले बुरे के पीड़ पहचानत किटे ते कुंचर सोला सब पर कृपा दिस कर संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुख एक एक की पीड़ पहचाने कट कट के पट पट के जाने

0: जानत भेद भेद और आलम निरंकार निरंकार निर्लंबर आदिनाद
1: ताका मूले चार तपेदा जाको भेद न पावत ताको कर पाहने अनुमान महामूर कश भेद न जानत महादेव को कह सदा निरंकार का चिन्ह तने पे आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पहन पहन तो तेती तुम्हारा लखन जाए ससारा के एक रूप रूप स्वरूप रंग आपके अंडर जेरन से तज कीनी तुझ खान गौर बहु फूल राजा बैठा कौन स्मृत शंकर सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंब आज जुगा स्वरूप ब्रच्छा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगर जो कल कोई काम करने रक्षा हो सब कृपा रेत सेद कर मुसब हो दुष्ट शास पर सके न एक बार जिन तुम्हें संभार काल पास्ते ताए हो जिन नाम ते हरो आधार दुष्ट लोग ते खड़

खसम न फिर चित डिठी हव टंडोल एक सुबाज ना कोए आओ साजन तू मुख लग मेरा तन।

सगल पराशत लाथे मिल साज संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जब पूरन होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब श्रेष्ठ।

0: यार वे प्रिय हद सखिया मु कही ना दे गया
1: यार वे एक डू एक चाड़ हाँ किस चेते ही
2: एक डू एक